अस्सलाम वालेकुम मी दिवेही मी नोधे के मेघाट्स दिवेही एफएम दिवेही एफएम के एम में हां लोबे ते हम तेरे न वारम उफा वेरी वागु तक गए दे मी अदस मेगाडी में बदल कोली टी टाइम रिक्वेस्ट मी शो आए को मी अदके शो आए को में बदल करनी आलू गंट अजीजा फारूक अस्सा देंगे अगर का फर्स्ट करती रिस सिंगो माहमिया मेरे को शो विस कोरिया दाने ऐ हम यहाँ इस आबम फेशिंग हम शो का बैवेरू मा मैसेज करे बे ने पीएसएम यहाँ में दोरी को डीएफएम नो दिया एके मी पेज मैसेज करा मुंगे दाने लावें अड़ो हालम बेनुम विस नोनी हाँ सफारत का फोन हम बेनुम मैसेजिंग मोतस ऐ फुर्सत मी शो के तेरे लिबिगे दाने उम्मीद करा मेरे दिस हम वारा गीना फारत का वाह का दक्का ला हम वारा ही गया मुलावत के अडो हालुम के फुर्सत ले पेने कमा एहे बीमा लसनो को अब हम मैसेज को ला नुआ दिया एके मी पेज पीएसएम यहाँ में दुबेर को बैवेर वे वेने ऐ मशो फेशम के गोतुं वारंग ही क्या मुरी दी लावे कफाओ बदल को लाना

मैं कुछ भी कर लूं, तुम कभी मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और तुम कुछ भी कर लो, मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर सकता।

के उभरने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं उनके शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं सफर।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।